आरती ठाकुर ने गाई संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी ने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत तुकाराम की ये भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं तादाद सांदेकर।

संत तुकाराम की यह भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे दादा चांदेकर। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत भानुदास की ये रचना, जिसे गाया है मनोहर सबनेस और सहकारियों ने।

मनोहर सबनीस और सहकारियों ने गाई संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में ख्याल और सिंधूरा काफी में ठुमरी. आज ही कलाकार हैं सबीना मुमताज इस्लाम. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिमिर रॉय चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं चित्तरंजन दोलुई. सबीना मुमताज इस्लाम अपने गायन का आरंभ राग जौनपुरी में ख्याल से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं राग जौनपुरी में ख्याल गायन.

0: कलाकार सवीना मुमताज इस्लाम.
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल्स. लिसन टू ख्याल इन राग जौनपुरी फॉलोड बाय ठुमरी सिंदरा काफी. आवर आर्टिस्ट इज सबीना मुमताज इस्लाम. Accompanying our artist on the tabla is Timir Roy Chaudhary, and on the harmonium is Chittaranjan Doloi.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थीं सबीना मुमताज इस्लाम। सबीना मुमताज इस्लाम अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करने जा रही हैं सिंदूरा काफी ठुमरी। तो आइए सुनते हैं सिंदूरा काफी ठुमरी, कलाकार सबीना मुमताज इस्लाम।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये सिंदूरा काफी ठुमरी सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी सबीना मुमताज इस्लाम। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर रॉय चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे चित्तरंजन दोलुई। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग नट भैरव में ख्याल गायन। आज ही कलाकार हैं रागेश्री दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव में ख्याल गायन। कलाकार रागेश्री दास।
1: You were listening to Khayal in Raag Jaunpuri, followed by Thumri Sindura Kafi. Our artist was Sabina Mumtaz Islam. Accompanying our artist on the tabla was Timir Roy Chaudhary, and on the harmonium was Chittaranjan Doloi. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present Khayal in Raag Nat Bhairav. Our artist is Rageshri Das. Accompanying her is Pinaki Chakraborty on the tabla and Sanathan Goswami on the harmonium. Listen now to Khayal in Raag Nat Bhairav by Rageshri Das.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज की कलाकार थीं रागेश्री दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे

0: सनातन गोस्वामी, ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू खयाल इन राग नट भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज रागेश्री दास। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज पिनाकी चक्रवर्ती एंड ऑन द हारमोनियम वॉज सनातन गोस्वामी। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गायन. प्रस्तुत है राग बिहाग. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं कैसे सुख सोए. द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं आज रहो मोरे प्यारे रघुवीर.
2: Listen to Hindustani classical vocal recital by Vidushi Padmavati Shaligram. She is presenting Rag Bihag. Vilambit Bandish, set to Ektal. Bol, Kaise Sukh Soe. Drut Bandish, set to Teen Tal. Bol, Aaj Raho More Pyare Raghuveer.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, सुनते रहिए हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गाया राग बिहाग। तबले पर संगत किया था पंडित राजेंद्र अंतरकर ने और हारमोनियम पर थे पुरुषोत्तम वालावलकर। अब आप सुनिएगा विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गाया राग दुर्गा। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं रस कानहरी। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं बंसी वाला कान्हा।
1: This is Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music. You are listening to Rag Bihag by Vidushi Padmavati Shaligram. Accompanying her on tabla was Pandit Rajendra Antarkar, and on harmonium was Purushottam Valavalkar. Continuing the concert, now listen to Rag Durga by Vidushi Padmavati Shaligram. Vilambit Bandish, सेट टू तीन ताल, बोल रस कानहरी। द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल बंसी वाला कान्हा।

0: अभी आप विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गाया राग दुर्गा सुन रहे थे। तबले पर संगत किया था पंडित राजेंद्र अंतरकर ने, सारंगी पर लियाकत अली खां और हारमोनियम पर थे बबन मांजरेकर। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है, सुनते रहिए हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल बाय विदुषी पद्मावती शालिग्राम। The accompanying artists were Pandit Rajendra Antarkar, Liaquat Ali Khan, and Baban Manjrekar on tabla, sarangi, and harmonium, respectively. This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सुमित्रा गुहा का गाया राग मिया की मल्हार. विलंबित ख्याल एक तालमनिबद्ध है. बोल हैं करीम नाम तेरो और द्रुत ख्याल तीन तालमनिबद्ध है. बोल हैं काहे लाडली. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय सुमित्रा गुहा. शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय प्रसून चैटर्जी एंड ऑन द सारंगी बाय भारत भूषण गोस्वामी. शी विल फर्स्ट प्रेजेंट राग मिया की मल्हार, इन विच यू विल हियर द बड़ा ख्याल सेट टू एक ताल, फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल.

0: अभी आप सुमित्रा गुहा का गाया राग मियाँ की मल्हार सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग देश। मध्य लय ख्याल सितारखानी ताल में निबद्ध है। बोल हैं चलो कोकिला और द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं बीत जाता बरखा ऋतु। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग मियाँ की मल्हार। कंटिन्यूइंग विद वोकल रिसाइटल सुमित्रा गुहा नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग देश in which you will hear first a composition set to Madhyalaya Sitarkhani Tal, followed by another composition set to Drut Ek Tal.

0: अभी आप सुमित्रा गुहा का राग देश सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग देश वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय सुमित्रा गुहा। She was accompanied on the tabla by Prasoon Chatterjee and on the sarangi by Bharat Bhushan Goswami. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है अपर्णा केड़कर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग अहिर भैरव सुनते हैं। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है तेओ जिया सुख पावे, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है अलबेला साजन आयोरे। साथ संगत हारमोनियम शुभांगी भवसर और तबला माथव मोड़क। तो आइए सुनते हैं राग अहिर भैरव, कलाकार अपर्णा केड़कर।

अभी आप सुन रहे थे अपर्णा केळकर द्वारा प्रस्तुत राग अहिर भैरव, और अब सुनते हैं राग भटियार, कलाकार अपर्णा केळकर। विलंबित रूपक में निबद्ध रचना के बोल है उचट गई, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मारो कंठा विदेशा। साथ संगत तबला रघुराज तुलसीबाग वाले और हारमोनियम शरद सिद्धये। तो आइए सुनते हैं राग भटियार, कलाकार अपर्णा केळकर।

श्रोताओं, अब आपने सुना अपर्णा केड़कर द्वारा प्रस्तुत राग भटियार। आपके साथ तबले पर थे रघुराज तुलसीबाग वाले, हारमोनियम पर शरद सिथैये। ये आकाशवाणी पुणे की निर्मित थी रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग जोग कौस पर ख्याल. कलाकार हैं रीता रॉय. आपके साथ तबले पर हैं आलोक मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर है देवाशीष अधिकारी. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जोग कौस पर ख्याल. कलाकार हैं रीता रॉय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani Vocal Recital. Listen to Khayal in the rag Jog Kaus. Our artist this evening is Rita Roy. Accompanying our artist on the tabla is Alok Mukhopadhyay and on the harmonium is Debashish Adhikari. Listen now to Khayal in the rag Jog Kaus. Our artist, Rita Roy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग कौंस पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थी रीता रॉय। आपके साथ तबले पर थे आलोक मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग जोग कौंस। Our artist this evening was Rita Roy. Accompanying our artist on the tabla was Alok Mukhopadhyay and on the harmonium was Devashish Odhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है गुलशन भारती का उपशास्त्रीय गायन. आइए पहले सुनते हैं मिश्र काफी में ठुमरी, जिसके बोल हैं अचरा छोड़ो कन्हाई. तबले पर संगत की है अरुण कुमार भट्ट ने और हारमोनियम पर इलियास खान ने.
2: दिस इज रागम. टुडे इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर गोइंग टू प्रेजेंट लाइट क्लासिकल वोकल बाई गुलशन भारती. फर्स्ट ही इज गोइंग टू प्रेजेंट ठुमरी इन मिश्र काफी. कॉम्पोजिशन इज अचरा छोड़ो कन्हाई. अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला अरुण कुमार भट्ट एंड ऑन हारमोनियम इलियास खान.

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे मिश्र काफी में ठुमरी, और आइए अब सुनते हैं माज खमाज में दादरा, जिसके बोल हैं पिया लागी लगनिया। कलाकार हैं गुलशन भारती।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग ठुमरी इन मिश्र काफी। नाउ यू लिसन दादरा इन माज खमाज। कॉम्पोजिशन इज पिया लागी लगनिया बाई गुलशन भारती।

0: ये था माझ खमाझ में दादरा। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं मिश्र भैरवी में ठुमरी, जिसके बोल हैं अलसाने नैना जागे।
1: यू आर लिसनिंग दादरा इन माझ खमाझ। बाय कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम नाउ वी आर प्रेजेंटिंग ठुमरी इन मिश्र भैरवी। कॉम्पोजिशन इज अलसाने नैना जागे।

0: मिश्र भैरवी में गाई ठुमरी के बाद आइए अब सुनते हैं मिश्र कालिंगड़ा में दादरा, जिसके बोल हैं बालम नैया डगा मग डोले।
1: After Thumri in Mishra Bhairavi, now Gulshan Bharti is presenting Dadra in Raag Kalingara. Composition is Balam Naiya Dagamag Dole.

0: अभी आप सुन रहे थे गुलशन भारती का गाया मिश्र कालिंगड़ा में दादरा। तबले पर संगत की थी अरुण कुमार भट्ट ने और हारमोनियम पर इलियास खान ने। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।
1: यू आर लिसनिंग तुमरी एंड दादरा बाई गुलशन भारती। Accompanying him on tabla, Arun Kumar Bhatt, and on harmonium, Ilyas Khan. This is Ragam 24/7 DTH, Anytime Indian Music. This program was contributed by All India Radio, Lucknow.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा. राग है बसंत मुखारी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ झाला तत्पश्चात दो गतें. विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुतगत। विलंबित गत झपताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थी विदुषी जरीन शर्मा। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित विश्वनाथ का गाया राग गुर्जरी तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं काहे बजावत बीन और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं बन के पंछी भय बावरे. तबले पर आपकी संगति की है मनोज नागर ने और हारमोनियम पर अदिति नाथ ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित विश्वनाथ. ही इज अकंपनीड बाय मनोज नागर ऑन तबला एंड अदिति नाथ ऑन हारमोनियम. फर्स्ट लिसन टू राग गुर्जरी तोड़ी. द विलंबित गत इज सेट टू एक ताल. द वर्ड्स आर काहे बजावत बीन. एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल. The words are, बनके पंछी भय बावरे.

0: पंडित विश्वनाथ का गाया राग गुर्जरी तोड़ी अभी आप सुन रहे थी। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग नट भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं सुमिरन तोरा, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं करम की नजर राखो।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग गुर्जरी तोड़ी बाय पंडित विश्वनाथ। नाउ लिसन टू राग नट भैरव। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल, द वर्ड्स आर सुमिरन तोरा, द द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल, द वर्ड्स आर करम की नजर राखो।

0: अभी आप पंडित विश्वनाथ का गाया राग नटभैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी मनोज नागर ने और हारमोनियम पर अदिति नाथ ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडेशन इन राग नटभैरव बाय पंडित विश्वनाथ। ही वाज अकंपनीड बाय मनोज नागर ऑन तबला एंड अदिति नाथ ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

जय श्री बथीजा के स्वर में ये पारंपरिक सिंधी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं ओंकार प्रभुघाटे से ये मराठी भक्ति रचना।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।